पौड़ी बड़ी होड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई।

हे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत

सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए। खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी।

मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो संभल थकी जी ओ कद न बोले कौरा कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवान अवगण को नाच तारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले काट काट वासी सर्व निवासी नेरही ते नेराल नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हों विषम पई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जेवड अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रवया जल थल महियल सोई चरण कमल जप सागर तरया पाव जल उतरे पारा नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हौ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सत गुर कहिया जी साचा अगम बिचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठ सहज सुख आनंद कनेरे हाँ मैं बिनठी गठ सब के मद सब होते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद शरणाई हर प्रीतम मन है सधारो मैं खोजत खोजत जी
हर निह चल सो कर पाया, सब अत्रोव डिठ जियो ता चरण कमल चित लाया।

धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमृत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निद स्वामी वड पागी हर हर गाया श्रुत सिमृत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निद स्वामी वड पागी हर हर गाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हों संमल थकी जी ओह कदे न बोले कौरा।

गए मसकत कार नानक ते मुख उजले केते छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

गए मशक्त काल, नानक ते मुख उजले केते छुटे नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
1: औड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किश तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद वदाई तुद कर मान मता तेज अपना आप जर
0: सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दय दाई दाया खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख जले केती छुट्टी ना जिने नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख जले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

होड़ी वड़ी होड़ा पा तेरा मतवा रंग रंगा ने कहा जापन करतवा जिया अंदर जियो सब किस जानदा सब किस तेरे वस तेरे कर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक।

शरमा शरण परे की राखहु शरमा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तव चरणन मन रहै हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहै प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ली हो मोहे राखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाई ब्रह्मा बप तरा, काल पाई शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए।

ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने काट काट के पाट पाट की जाने। जाब उदकरख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जाब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जी अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखाने ओ दोहरा।

वारणा सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाली साची साहेबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस देह सो पावई सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावई।

रै साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुन हौ संत हौ, शबद धरहु प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शबद तित घर सभागै, घर सभागै शबद वाजे कला, जित घर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख होआ, तित करे

सज्जन पंथ की जीतन श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बल बोलो जी वाहे।

दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान सिर दान नाम दान सिर अमृत सर साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो।

अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखहु शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखहु शरणाई सुकहु टल गुर सेवियै अहनिस सहज सोभाए दर्शन परस आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसम दी नूर और सहो कुरसो चटिया तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जयत सरी महला चौथा कर पहला चौपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही रतन नाम हर बसिया गोर हाथ तरियो मेरे माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतर गोर नाम दियो रिन लाथा मेरा ही अरन रतन नाम हर बसिया गोर हाथ तरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतर गोर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था
ਗੌਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬੇਨ ਨਾਇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਪਾਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਥਾ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬ ਹੋ ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਥਾ।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंधले कौ गोरे अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंधले कौ गोरे अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन भगत वच्छल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अच्युत है। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा पेटिया जन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई। सोहिलारा गगौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिय करते का होए विचारो तित कर गावह सोहिला सिवरे हो सृजनहारो। तुम गावह मेरे निरभाओ का सोहिला हौ वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दन कीमत ना पवै ते सदा ते कवन समार। संबत साह लिखिया मिल कर पावहु तेल देहो सज्जन असी सड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। घर घर हो पहुँचा सद्दड़े नित पवन सद्दन हारा सिमरिया नानक से देहयावन। राग आसा महला पहला शै कर शै गुर शै उपदेस गुर गुर एको वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बड़ाई तोए रहाओ। विसोए चसिया घड़िया पहरा थित्ती वारी माहो होवान सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल अनलो पवन चवरो करे सगल बान राय फूल अंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिना सहस तव गंध इव चलत मोही।
ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਵਾਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰਿ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ, ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਆਨ ਦਿਨੋ, ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ। ਹੋਏ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਚੁਭ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਹੈ ਜਮ ਕਾਲ, ਸਹ ਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰਾਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੋਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਹੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਜ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁ

0: नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ दे कर हथ।
1: मैं तान दिबान तू है मेरे स्वामी,

साचो आप ही ने रचो ना दो पुत्र साजी अगर असन डिठो चाहो दाता करता आप तू तुझे वे करे पसाओ तू जानो ही सब सह दे सह जिंद कवाओ कर असन डिठो चाहो।

क्या तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चे सप्तान सच्चे सब जो, सच्ची तेरी सिफत।

मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे बेचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण कौ दीदार हिंदू सलाई सलान दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुन त्याण जीते अलख नाम करतार सुख मुर नाम निरंजन काया काकार सतिया मन संतो गुपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बवेकार एक होदा खाए चले अथाऊ तिना पी काई कार जल थल जिया पूरिया लोहा कारा कार ओए जे

0: दुख दारू सुख रोग मया जा सुखताम ना हो, तू करता करना मैं नाही जाओ करी ना होई, भले हारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाय लख्या रहा, जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूरया, तू सच्चा साहिब सिफ सवाले हो जिनकी ती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, कहो नानक करते किया बाता, किच करना सो कर रहे आ महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे कव जाने पे, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।

गावें जनकाद जुगत जोगेसर, हर रस पूरन सर्ब कला। गावें सनकाद साध सिधादिक, मुन जन गावें अशल शला। गावे गुण धूम अटल मंडल वै, भगत पाए रस जानियो। कभी कल सुजस गावो गुर नानक, राज जोग जिन मानियो।

प्रभ तेरो थानंग मन धन तेरो प्राणंग एक सूत है जहानंग कवन उपमा दियो बड़े।

है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी ही क्या

0: जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनिध नाम निधान रिद सिद ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अविनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दड़ायो गुर रामदास कल उच्चर ते हर प्रेम पदार्थ पायो।
1: उद्दम कर लागे बोह भाती बिचरे अनिक शास्त्र बो खटुआ भसम लगाए तीरथ बोह भ्रमते सूखम देह बंदे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यों प्रेम बटाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनिक पांत थाटे कर ठटुआ।
2: सतगुर नाम एक दिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तारै शब्द दिद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बख्याता एह निस त्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दरिदर जावै नाम सो निधान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत।

सहजो दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख हो सिफत खसामी अरसह कुरसह तदरठे सचे पातशाह जन्म जन्म दी सजन सचा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजन सचा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया जीवन हर जीवन जीवन हर जप साध संग रहा अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती राथ आस अस बारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया

0: कलयुग रथ अगन का कूड़ गिर थवाओ महला पहला।
1: साम कहै सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रह सब को सच समावे ऋग कहै।

मस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समाधंग मुख झूठ बिपुखण सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गल माला तिलक लीला टंग दो धोती बस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्म करमंग सब पोकर निश्चो करमंग कहो नानक निश्चो त्या विण सतगुर।

बैठे कूड़िया मत पिटै वे मत पिटै एहो अन साडा फिटै तन फिटै फेड़ करेण मन जूठै चुली परे कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाई है।

0: जे मोहा का कर मोहे कर मोहे पितरी दे अगे वस्याणिए पितरी चोर करे वडिए हाथ दा लाल के मुसफिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: ज्यों जोरु सरनावणी आवे वारो बार झूठे झूठा मुख वसै नित नित होए खुआर सुचै एह ना आखिए बहन जे पिंडा तोए सुचे से ही नानक जिन मन वसया सोए।

आखिए जित जमे राजा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ही पांड उपजे पंडै बाज न कोय नानक पंडै बाहरा एको सच्चा सोय जित मुख सदा साला ही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले